ओ ये नन दोगाजी आ तिरिन खबक क्योलोल खबन के अनि गा त कट्टु बाजी छ ये न चुच जापान कोरे आइन माले चु यांगला तामंग युल संगेन ना यांगला तामंग युल सारी तुन बकट्टु बन्छ आइन यांगला तामंग गोइलो कन्दोला ना बर चु यांगला तामंग गोइलो कन्गो धोलो गाय ग्याम रिखाना खानन एदंगे चु लुसि भमला चु कन्छ बर नंगार एदेनगा नाला धिमरि निबला।

0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: Es la zarabilla que borró en el aquí, man, se exentó la nota con el aquí, pelegan de aquí, afuera cotito en el aquí, es que rat, me he lavo, se hon el aquí, me le bola, es que chote se fighta, super tip, che, vaya, me dicho en degre que flighta, schedule toda tight, que te adetea, jut bolne que be a kaita, que se peta un life chuto se bani, pies de hair que yo gruto se bani, me na que si insan se bani, bani to bas, cabristan, que buto se bani, me cabi bot, zara sad, cabi bot, if any, mere goyat que back on, no me. टिफनी मेरे और जीत के बीच कोई बट टिफनी चुतियों की टिप्पणी पे न करू टिप्पणी तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी जलता है उसकी गांठ फाड़ता फिरूं हेड पे हेड मैं मारता फिरूं तीन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

और मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: 姐。
1: बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। मुझको जा तू है लॉर्ड, ये तो बता तू है लॉर्ड, कहाँ से आई है कहाँ से जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: कहते हैं तुझको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे क्यों मेरा ब्रेक करे ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट।

आत्मलत्तम चुहिन् बकी करार पवित्र आत्मज्ञम उत्पन्न तला चुल अर्थ संसार लहाजीबायन अध्यारो शक्ति से परमेश्वर से नंदा पिंसुब करादा थुरबरी हामला चु करार पत्र ल आइनबा चुल अर्थ तिगहिनबा जब रंग हलाइदेन सम्झौता ल सुमुला थेन्दे रंग ल निश्चित आरे कि रंग थेनी गदे द थे सम्झौता ल अन्त्य छोना लाब्रे विश्वास लाब्रे हमसुला कि बिसी रंग तिग लसुला रंग से याकर गी कानूनी कागजा तयार लसुला जुनरी सम्झौता ल शर्त गदे तमुला थेन्दे रंग से थेनी गदे द हस्ताक्षेप लाब्रे लगप लसुमुला चुसे चुदा अदालत भी कानूनी बाध्यकारी सम्झौता सुमुला परमेश्वर से नन्दा पिन्सुब करार ल प्रतिज्ञा रोसी दस्तावेजी हस्तक्षेप लब भन्दा लानन घेन मुला चु आत्मरी तब करार हिन्बा चुसे चुदा आत्मिक ग्लारी छम्बी प्राकृतिक ग्लारी एन बाध्यकारी सम्झौता सुमुला आत्मिक माध्यम ज्ञम करार ला प्रतिज्ञा यंगमा कदे ज्ञान ताम हिन्दा चु करार से बेनन प्राकृतिक नियम कदे रे शासन लमुला चु संसारी हाजीबाई यन ताम से चुला विरुद्ध छे बारे अहम टिक्द विषम आत्मिक ग्ला प्राकृतिक ग्ला भन्दा फिरी मुला ज्ञान आत्मिक ग्लारी शैतान ला हाजीबाई नोन शैतानी शक्ति से चुदा थ्रुबा ज्ञान का बारे अहम टिक्द विषम थेनी गरे परमेश्वर विरुद्ध ला हाजीबाई नोन युद्ध डावरे असमर्थ मुला आनन्द लौ परमेश्वर तिनी मुसिला थेन्द्या हाइमा दमन यङला बेनन आवश्यकता कदेला लागरी यङला पुरन प्रदायक लसुमुला चुरोला यङदा लब करारला प्रतिज्ञा हिन्दा आमेन परमेश्वर श्री रङ्गिला जीवन रे प्रशस्त मात्र आशिष दिन्छु प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश यङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमका बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ्गा बिदा दाजी रङ्गी छङ्मदानु जय मसी नमस्कार।